0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 6 बजेको छ
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेक द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: अनुभवी चिकित्सक अत्याधुनिक प्रविधि गुणस्तरीय सेवा सहित अब मात्र एउटै छानामुनि सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवाका लागि सेवा मोडल हस्पिटल प्राली
1: दुई दशक भन्दा बढी अनुभव प्राप्त एमडीसीपी कन्सल्टेन्ट द्वारा 24 घण्टा आकस्मिक सेवा
0: हप्ताको 7 दिन बहिरंग ओपीडी सेवा 24 घण्टा ल्याब परीक्षण सेवा 24 घण्टा अनुभवी तथा तालिम प्राप्त चिकित्सक तथा नर्स द्वारा गुणस्तरीय बिरामी भर्ना सेवा
1: हप्ताको 7 दिन एमडीसीपी कन्सल्टेन्ट तथा सोनोलोजिस्ट द्वारा भिडियो एक्सरे यूएसजी सेवा
0: लमजुङमा नै पहिलो पटक उच्च प्रविधिको डीआर सिस्टम सहितको एक्सलेन्स डायनामिक इमेजिङ टेक्नोलोजीका साथ 500 MA हाई फ्रिक्वेन्सी डिजिटल एक्सरे सेवा
1: फोक्सोको क्षमता तथा दम पत्ता लगाउने पीएफटी जाँच तथा परामर्श सेवा
0: प्रत्येक दिन ईसीजी सेवा
1: विशेषज्ञ सेवा अन्तर्गत पेट मुटु तथा छाती रोग विशेषज्ञ प्रोफेसर डाक्टर मनोज श्रेष्ठद्वारा मुटुको जाँच परामर्श सेवा तथा इकोकार्डियोग्राफी
0: वरिष्ठ छाला यौन तथा कुष्ठरोग विशेषज्ञ डाक्टर अच्युत पोखरेलद्वारा छाला तथा यौन रोग सम्बन्धी जाँच तथा परामर्श
1: वरिष्ठ मधुमेह थाइरोइड तथा हर्मोन रोग विशेषज्ञ डाक्टर रमेशराज आचार्यद्वारा जाँच तथा परीक्षण
0: जनरल फिजिसियन सेवा अन्तर्गत बाल रोग सम्बन्धी जाँच तथा परामर्श
1: हाड जोर्नी तथा नसा रोग सम्बन्धी जाँच तथा परामर्श
0: नाक कान तथा घाँटी सम्बन्धी जाँच तथा परामर्श
1: गर्भवती सम्बन्धी सम्पूर्ण जाँच तथा परामर्श सेवा
0: अन्य सेवा अन्तर्गत रेबिस टिटानस इन्फ्लुएन्जा लगायतका खोप सेवा
1: सामान्य शल्यक्रिया तथा प्लास्टर सेवा
0: परिवार नियोजन सेवा
1: मनोसामाजिक परामर्श सेवा
0: नोट घरमा नै गई होम विजिट सेवा तथा आवश्यकता अनुसार टेलिमेडिसिन टेलिनर्सिङ सेवा पनि उपलब्ध छ
1: तपाईँको स्वास्थ्य हाम्रो प्राथमिकता निरन्तर हजुरहरूकै सेवामा समर्पित सेवा मोडल हस्पिटल प्राली थप जानकारीको लागि सम्पर्क 0665909999 98477269229 सेवा मोडल हस्पिटल प्राली बेसी सर स्वाद सानीमा बैङ्कको ठिक

साझालो रेडियो मर्सङदी 95 मेगाहर्जतिर इन्टरनेट अनलाइन रेडियो मर्सङदी .org नाना 8 बजे खबर तमुकै मर्सङदी फेतेरी गाउँ खुसमा खुसमाया तमुसोला तेवा म ऐश्वरी कर्बे फेते।

जितरपे क्री व्यवसाय दे बन्दक लैमरी यातन पिबा आरोप क्री फैसी दे प्रहरी खापोइमो बेसर मधुवा खोलारी हथियार प्रयोग लैमरी क्री फैसी खाइते खटनारी बालो तपा फैसी दे प्रहरी न नियन्त्रण रे हङकङगरी मोबा लमजुङ थेमेजी न्यौलो परिवार दे 9 लाख आर्थिक सहयोग लैमो नारी खोला करी डोर संघर्ष समिति न आन्दोलन तखे लागे स्थगित समिति न माग बारे साउन 27 गते छलफल तवा तैमा ते लमजुङरी प्रतिफलरी आधारित अनुदान कार्यक्रम प्रभावकारी तस्याइमो यहाँ उत्पादन प्रोत्साहन कार्यक्रम लागि चालिब आर्थिक वर्ष लागि 50 लाख मुई खैमो लमजुङ जितर मुबा क्री फ्रेसी दे शारीरिक बन्धक बने मिरी कुटपेट लैमरी जबरजस्ती चेक थोबा लैदिबा आरोबरी क्रिजाना खापोखो मैरी तनहु शुक्लाकण्डी नगरपालिका छर्बे 33 वर्षीय अर्जुन खनालमो खनालजी लमजुङ मध्य नेपाल नगरपालिका एक जितर मुबा ग्रीन ग्रो एग्रो फार्मर संचालक भक्तपुर नगरपालिका 7 रुपये 76 वर्ष रुपये बलराम साया जुदे शारीरिक बन्धक लैमरी कुटपिट लै थेबा खुकुरी उइमरी थम्केबा दिएर यातना पिबा यातना पिमरी विभिन्न मुइ चेक जबरजस्ती थोबल लैदिबारी बिमारी प्रहरीजी खापो हैमा प्रहरी नान्सर घटना 2083 साल जेठ 22 गते यनारी करिब 7:30 बजे तब हो पीड़ित मैदे चनागवे दिनरी नानर 8:30 बजेसम्म फार्मर नरह्यो नियन्त्रण थेवा आरोप पर्दिलो आरोपले अर्जुन खनालले मदिनेवल नगरपालिका 1/59 खबा साउन 18 गते खापो होबा प्रहरीजी बेमो घाँदीखोला करिडोर संघर्ष समिति जी चौबन्द वैष्ण घटना लगत जलविद्युत आयोजना सम्बन्धी भए यातायात बन्द कार्यक्रम तयारी लागि स्थगित लमिम समितिजी मर्सङ्गी नगरपालिका 6 नोर्वे धुवान 14 दकिया नाइटी समवे क्या स्तर उन्नति माग थेमरी आइतबार त क्या आवश्यक लेयो आवश्यक बाहेक सवारी साधन सञ्चालन रोग लगैलो विषय विभिन्न चरणी संघर्ष समिति गठन लैमरी सम्बन्धित जलविद्युत आयोजना भए प्रमुख मैदे बालो छलफल लैमरी पटक पटक पत्रचार दिएर बैठक आयोजना लबरे पनि आयोजक प्रमुख मैजी थेमे उपस्थित आतनायो प्रतिनिधि मात्र सहभागी लमिबा नास थेमे न मागबारे ठोस निर्णय आलामीबा लिसो बैठक निष्कर्ष विहीन तब बिमारी थेमेजी आन्दोलन ललो संघर्ष समिति सोमबार फेरि प्रेस विज्ञप्ति छिमरी यातायात बन्दैन कार्यक्रम स्थगित लमिमो तहोबै लागि तय जलपित आयोजना प्रमुख मैले मर्सङ्गी नासपालिका दिएर संघर्ष समिति र पदाधिकारी देवालो सम्पर्क लैमरी साउन 27 गते नासपालिका सभाहलरी संघर्ष समिति रेवा मागबारेरी औपचारिक छलफल दिएर सुनवाई लब सहमति लैमो प्रतिफलरी आधारित अनुदान कार्यक्रम प्रभावकारी तसिया लमजुङरी न्याय मुई बिनी वृद्धि तसिया आर्थिक वर्ष तुलनारी यहाँ उत्पादन री आधारित अनुदान कार्यक्रम लागि गण्डकी प्रदेश सरकारजी मुई बर्दिमारी पिमी म प्रदेश सरकारजी चलिब आर्थिक वर्षले प्रतिफल आधारित अनुदान कार्यक्रम लागि लमजुङरी 50 लाख भन्दा बढी मुई विनियोजन लैम यब आर्थिक वर्षरी चु कार्यक्रम लागि 42 लाख रूपियाँ विनियोजन ललो विषय जिल्लर मुभा भेटनरी दिएर अस्पताल दिएर पशु सेवा विज्ञ केन्द्र लमजुङ दिया कारण तपाईँ लैमरी चुसिर सरकारी विनियोजन लैमो प्रोत्साहन अनुदान यो मध्ये बालो जिल्लारी कृषक मध्ये व्यवसाय यहाँ उत्पादन आकर्षित तैम जिल्ला प्रशासन कार्यालय लमजुङ तकिया यब आर्थिक वर्षरी 20 वटा मुद्दा फैसला तैम आर्थिक वर्ष 82-83 प्रशासन रिपोर्ट 23 वटा मुद्दा मध्ये 20 वटा मुद्दा फैसला तैम जिल्ला प्रशासन कार्यालय जी चुवा आर्थिक वर्षरी दर्ता तब 19-13 अघिल्लो आर्थिक वर्षरी दायित्व सरी खबा प्लिउलो मुद्दा मध्ये 20 वटा मुद्दा फर्छोट लबा बिमो प्रशासन अनुसार उही सबै आर्थिक वर्षरी सर्दी खपा प्लिउलो मुद्दा मध्ये यब आर्थिक वर्षरी तायो मुद्दैन फैसला तब बिम छलाय यब आर्थिक वर्षरी पर्दिप 19 वटा मध्ये 16 वटा मुद्दा फैसला तय बिम जिल्ला प्रशासन कार्यालय मुद्दा साखरी यवा आर्थिक वर्ष मात्र 19 वटा नयाँ मुद्दा दर्ता तबरी
उही सबै आर्थिक वर्ष त क्या पिउलो मुद्दा सर देखाइमरी 23 वटा तल जिल्ला प्रशासन कार्यान्वयन तथ्याङ्क अनुसार 16 मुद्दा चलिब आर्थिक वर्षै लागि सरी खबर दिएर चलिब आर्थिक वर्षै लागि सर्दी खबर तायो मुद्दा या आर्थिक वर्ष दर्द तब बिमो चलिब आर्थिक वर्षै लागि क्रि वर्ष भन्दा पुरानो क्रिय मुद्दा आरे भा प्रशासन कार्यालय लम्सुङसी बिमो लमजुङ सदरमुकाम बेसर लगायतपे बजारारी टुसाइना व्यापार सुरु तैम वर्षैना सिजन रियोबा टुसा हेदा क्या व्यापारी मजी बजारसम्म पोइमरी चुम्बा लैम टुसा बजारारी पोहबलिसु कि महिना हन्थाब लिय बर्दिम माग अनुसार आपूर्ति लला आँखा भा टुसा टुसा पोभा छिन्या बिम लिएर त समय नासु त क्या टुसा चुम्बै लागि सहर खबर क्या क्या रह्यो छिया बा व्यापारी मेजी बिम सबदे तरकारी न रूपारी कि बा ग्रामीण क्षेत्र रियो बा टुसा ल्यायो मेजी खोबा लमो चु टुसा किबे लागि मिमे ल्यायो आन्थाप तम सदरमुकाम बेसा देवालो खुदी उदीपुर भोटेवडा लगायतले बजारहरी टुसा कि चुम्ब व्यापारीमै ल्यायो खबा लमो किमै भागा अथवा बिम जिल्ला उत्तरी भेगारी टी खबा तोखो टुसा टोइमारे चुम्बै लागि बजारहरी खबा भ्याउदी अभ्याउदी बा तैप मर्सङ्गी फेटे तोखोबे लागि छ गयो फेटे छेउ बन्द वैसो क्रबे फेटे फेरि देखे जितारी कुई व्यवसाय दे बन्द थेमरी यातना पिपा आरोपी क्रिजना दे प्रहरी जी खापु खै मु हङकङरी मुबा लमजुङ थेमे जेङ हेलो परिवार दे करिब 9 लाख रुपियाँ मुइ सहयोग लै म नदी खोला करिडोर संघर्ष समिति आन्दोलन तोखोबे लागि स्थगित समिति मेन माघ बारे साउन 27 गते छलफल दे लमजुङरे प्रतिफलाइन आधार री अनुदान कार्यक्रम प्रभावकारी तैमो यहाँ उत्पादन प्रोत्साहन कार्यक्रमै लागि चालिब आर्थिक वर्षै लागि 50 लाख रुपियाँ मुइ खैम नानल खबर तमुके मर्सङ्गी फेटे तोखोबे लागि छिजी प्राविधिक थु सुजान्दे धन्यवाद पिङमारी फेटे गर्छ क्या खुसी माया तमिसो विदा कि म रेडियो मर्सङ्गी 95 मेगाहर्ज दिएर इन्टरनेट अनलाइन रेडियो मर्सङ्गी .org हेरिम दलात ओ छ्याजलो।

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 9 बजेको छ
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेक द डिफरेंस फील द एनर्जी
2: मर्सिंग एफएम 95 मेगाहर्ज
3: किसान पाई प्रोडक्ट्स प्राली को हो
4: राष्ट्र को शान किसान
3: अ कम्प्लीट पाइपिंग सॉल्यूशंस

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 10 बजेको छ
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: नेपाल ऋण खप्पै बिमगाछ क्याल्बोलुम प्रविधि से शोभा अल्मोनियम कोटेल सादा थिन रंगीन जस्ता पाता हुलास जुरा कलर छ्यान भन्दा तीन गुना बढी विश्वसनीय प्रतिरोधात्मक थिन लानन टुबमुला
1: तीन गुना लाना टुला
0: हुलास मुसम अर्कु तिल दमाइसे
2: हेलो मर्सिंग एफएम 95 मेगाहर्ज

0: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक
1: टाइम चेक अहिले ठीक 12 बजेको छ.
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी.

0: क्या कर रही है थर्पी आ गया दौलत
1: कौन
0: पता नहीं थर्पी की गाड़ी चला रहा था मरते मरते बची हूँ मैं
1: फालतू है साला मुफ्त में सुन रहा है मत देख उसको चल छोड़ मैनेजर देख रहा है

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 2 बजेको छ.
1: Extreme energy drink. Taste the difference. Feel the energy.

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 4 बजेको छ
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक
1: टाइम चेक अहिले ठीक 5 बजेको छ.
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी.
3: तपाईँ रेडियो मर्सेङ्गी एफएम 95